0: साथै मर्मत पनि गरिन्छ। साथै 5 मिनेटमा पासपोर्ट साइजको फोटो निकालिन्छ। मोबाइलमा फोल्डर हाल्ने र बुफर पनि उपलब्ध गराइन्छ।
1: लक्की ट्रेडर्स सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम नजिकै नेपाल टेलिकम जाने बाटोमा सञ्चालक खगेन्द्र चौधरी, सम्पर्क नम्बर 9868551000।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
3: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकलछु।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
5: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

0: के कब्बू का पिए रही था कब्बू पेंसिल रही था कब्बू झोले फटाका आज कहा कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरा
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी एक आनल झोला दस कटरस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर अबदेखि टिकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको प्रत्येक शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ ससानो कुरामा टना भुने बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने कुलटमा लाग्ने छटपटी हुने मुटु धेरै ढुकढुक हुने जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही असोज 10 गते 17 गते 24 गते र 31 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नुहोला। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।

0: 11 प्रकार का विशेषज्ञ सेवाहरू अब टीकापुर अस्पताल में उपचार का लागि विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाहरू
1: हाड़ जोड़ने विशेषज्ञ सेवा र विशेषकृत आर्थ्रोस्कोपी सेवा जोड़नी को दूरबीन बाट शल्यक्रिया
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा लैप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पाठीघर को शल्यक्रिया सेवा
1: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा जनरल सर्जन द्वारा विभिन्न किसिम का शल्यक्रिया सेवा लैप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पेट को शल्यक्रिया सेवा
0: जनरल फिजिशियन विशेषज्ञ सेवा
1: रेडियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ सेवा
0: दंत रोग सेवा
1: मृगौला का बिरामी का लागि डायलिसिस सेवा
0: मनोचिकित्सक विशेषज्ञ सेवा
2: हरेक महीना को प्रत्येक शनिवार
0: र सिटी स्कैन सेवा
1: गंभीर बिरामी का लागि भेन्टिलेटर सहित को आईसीयू एसडीयू सीईओएनसी र बाल बालिका का लागि एसएनसीयू सेवा
0: रोग पहचान का लागि प्रयोगशाला सेवा बायोकेमिस्ट्री इम्युनोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी पारासिटोलॉजी सेरोलॉजी इंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी डिजिटल वीडियो एक्सरे अल्ट्रासाउंड डिजिटल एक्सरे सेवा ईसीजी फिजियोथेरापी सेवा अस्पताल का अन्य सेवाहरू स्वास्थ्य बीमा सेवा सुरक्षित गर्भपतन सीएसी सेवा
1: फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा 24 घंटा
0: इमर्जेन्सी सेवा एम्बुलेन्स सेवा सब वाहन सेवा
1: हिंसा पीड़ितहरूका लागि ओसीएमसी सेवा मेडिको लिगल सेवा
0: सब परीक्षण सेवा सर्पदंशको उपचार
1: 12 लक्षित समूहलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सामाजिक सेवा इकाई
0: जनस्वास्थ्य तर्फ खोप सेवा एआरटी सेवा टीबी लेप्रोसिजिन एक्सपोर्ट सेवा
1: सेवा पाउन कठिनाई भएमा अस्पताल प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-488 सूचना अधिकारी पदमराज भट्ट फोन नम्बर 97-62-48-35 उपेन्द्र शाह 98-21-60-24-57 र अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत सरोज चौधरी को फोन नम्बर 98-57-85-63-22 मा खबर गर्नुहोला वा टीकापुर अस्पताल को क्यूआर कोड मार्फत अनलाइन सुझाव गुनासा रेकर्ड गराउनुहोला।
3: नेपालगंज मेडिकल कलेज में कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कंसल्टेंट न्यूरो साइकोट्रिक डॉक्टर आइनोडिन बागवान
4: यही असोज 17 गते तेस्रो शनिवार का दिन
5: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
3: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने बढी रिसाउने झिझो मान्ने बरबराउने अमिलो व्यवहार गर्ने कामकाजमा मन न लगाउने एक्लै बसेर टुलाउने भोक नलाग्ने निन्द्रा नलाग्ने दुब्लाउँदै जाने धेरै रक्सी खाने लागू पदार्थ सेवन गर्ने
5: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी छारे रोग मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या नकारात्मक सोचाइ आउने यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोला।
4: डाक्टर आउने दिन यही असोज 17 गते तेस्रो शनिबार
6: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजे बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टीकापुर टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस् आरोग्य मेडिकल टीकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क फोन नम्बर 98-68-80-0008 र 98-25-63-77-72।

0: छि छि फेर चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरलो से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बाक सर सफाई कई दी
0: फोन नंबर कटा हो त
1: ली डायल करी 97 6 20 20 3 0 0
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो
2: हजुर हो
0: महीन राजापुर बजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनौ कन्थे टिकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लम्की मन सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हाना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 3 0 0 98 6 56 92 0 26

0: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वडा कार्यालयके अनुरोध।
1: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वाडावासी दादु भैया दिदी बहिनी हुक्रे सड़क के किनार में पशु चौपाए नई बान देवी सड़क किनार में माल वस्तु नई कुरा देवी साथे सड़क किनार में पशु चौपाए बान के ढुंगा बालुआ गिट्टी मल कुरा के दुर्घटना हुईले से एकर जिम्मेवारी स्वयं व्यक्ति हुक्रा ले पर्ना बा।
0: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वडा कार्यालय लाइकपुर।

सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषा खोज खबर में यहां उक्रम स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप साम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। देश के तमाम स्थान में पानी पर्थी, कुछ स्थान में भारी से लेके अति भारी पानी पर्ना संभावना, सतर्कता रहना मौसमविद के आग्रह। अविरल वर्षा और बाढ़ पहिरो के कारण देश के मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध, राजमार्ग अवरुद्ध होके यातायात से प्रभावित। रेणु विद्या मंदिर कैंपस के 7वां वार्षिक साधन सभा शुरू, नया नेतृत्व चयन के लाग आज मतदान हुई। टीकापुर जानकीमा स्थानीय विपद तथा जलवायु उत्थानशील योजना के समेत निर्माण के बारे में छलफल। हाल देशभर मनसूनी वायु के साथ पश्चिमी वायु के फिर आंशिक प्रभाव रहल बा। साथ बलगर न्यून चापीय प्रणाली भारत के उत्तर महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ में समेत प्रदेश आसपास के रहल बटागिल बा। एक कारण से समेत अब देशभर आंशिक अधिकांश समेत देशभर के अधिकांश स्थान में मौसम बदल बा। कलोसे लुम्बिनी सुदूरपश्चिम प्रदेश में समेत ढेर स्थान तथा कोसी मधेश बागमती और गंडकी प्रदेश के कुछ स्थान में हल्का से लेके मध्यम वर्षा हुई रहल बा। कल रात के लुम्बिनी, गंडकी और सुदूरपश्चिम प्रदेश के कुछ स्थान में भारी वर्षा हुई बा। और प्रदेश में सामान्य से लेके मध्यम सम के वर्षा हुई मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से जनाइल बा। गैल 15 घंटा में सबसे ढेर वर्षा गुलमी के महुल वर्षे समेत वर्षा जलमापन केन्द्र समेत में 114 मिलीमीटर वर्षा मापन करल बा। औसतक गैल 15 घंटा में सुदूरपश्चिम प्रदेश में कैलाली की धनगढ़ी में 96.8, असम के बनगाम में समेत 88.4, औसतक डोटी के जोराइल में 84.4, दीपाइल में 80, असम के मंगलसेन में 76.6, औसतक के डलदुरा में 64 मिलीमीटर वर्षा मापन कर गिलवा। गैल 15 घंटा के वर्षा के अवस्था हेरबेर पूर्व से वर्षा पश्चिम ओर समेत सर्ती ऐतिर अलग देख गिलवा। आज दोपहर के गंडकी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश के ढेर स्थान में भारी से लेके भारी वर्षा के संभावना बा। लुम्बिनी और सुदूरपश्चिम प्रदेश के एक दो स्थान में अति भारी वर्षा के संभावना रहल मौसमविद विभूति पोखरेल जानकारी दे बाटे। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के ओर से वर्षा के संभावना बाकल से नागरिक हुकरन तरसैना नहीं हुके सतर्क रहना आग्रह करगिल। मौसमविद समेत पोखरेल कालसम वर्षा होने संभावना देखले ओर से नागरिक हुकर सतर्क रहना आग्रह करल बाटे। अब कर्णाली चिहापानी में समेत कर्णाली लडिया के जल सतह 7 मीटर 5 सेंटीमीटर पुगल बताइल बा। कलश कर्णाली चिहापानी में जल सतह 10 मीटर पुग्ना है। चेतावनी तह 10 मीटर 8 सेंटीमीटर पुग्ना है। खतरा के तह मान गिल बा। लगातार वर्षा के कारण हुई सेकना ढेर तथा पहिरो के उच्च जोखिम है समय ध्यान में धरती राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण से देशभर समेत 26 जिला में मुख्य सड़क तथा राजमार्ग में यातायात आवागमन बंद करल जनाइल बा। वर्षा के कारण पहिरो जाई तिरलकोर से राजमार्ग अवरुद्ध हुई रहल बा।

0: अविरल वर्ष 500 पृथ्वी राजमार्ग नारायणगढ़ मुगलिन सड़क खण्ड बन्द होइलबा कृष्ण भीरमा फे पहिरो गैलबा कलसे तर समेत वाल समेत लगायल गिरलक ओरसे समेत रोड अवरूद्ध हुइलखो पहिरो गिरके कान्ति लोकपथ अवरूद्ध हुइल पाछे यातायात सेवा प्रभावित हुइलबा कलसे पहिरो गिरलक ओरसे लदियाके जलसतह बढ़लक काली गंडकी कोरिडोर फे अवरूद्ध हुई स्थानीय प्रशासन से बतैतियाल बाद सत्य बीपी राजमार्ग का अवरूद्ध हुई पास काठमांडू की धुलीखेल और हुई थी पूर्व जैना सवारी साधन है फे धुलीखेल माहौल करगिल बा कल से कांभ्रे जिला प्रमुख प्रहरी एसपी रविन्द्र कार्की जानकारी दिले बाट उसके नाग ढुंगामा हुईलक उपत्यका बाहर ऐना गाड़ी फे समेत नाग ढुंगामा होल्ड करगिल जिला प्रहरी कार्यालय काठमाडौं से जानकारी दिहलबा एक साथ वर्षा के कारण हवाई यातायात माफे समेत कुछ स्थान में अवरूद्ध हुई बताई दिहलबा। खोज खबर में एक घड़ी विश्राम पास फिर से भी सुनते रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: टीकापुर नगरपालिका विपद व्यवस्थापन समिति को संभावित भारी वर्षा र बाढ़ी सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना। आदरणीय नगरवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमान अनुसार आउँदो असोज 9 गतेदेखि 11 गतेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत यस क्षेत्रमा बढ़ी अथवा धेरै भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। टीकापुर नगरपालिका कर्णाली नदी र स्थानीय नदी कुलाहरूको तटीय क्षेत्रमा अवस्थित भएकाले अत्यधिक वर्षाका कारण आकस्मिक बाढ़ी, डुबान र कटानको उच्च जोखिम देखिएको छ। तसर्थ धनजनको क्षति हुन नदिन सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा विपद व्यवस्थापन समिति हार्दिक अपील गर्दै निम्न बमोजिम सतर्कता अपनाउन अनुरोध गर्दछौ। मुख्य सावधानी तथा पूर्व तयारीका उपायहरू: नदी किनारमा नजाऊ, बाढ़ीको समयमा माछा मार्न, काठ दाउरा संकलन गर्न वा पौडी खेल्न कर्णाली नदी र स्थानीय खोला खहरेहरूमा नजाऊ। महत्वपूर्ण कागजात तथा सामान सुरक्षित राखौं। आफ्नो नागरिकता, जग्गाधनी पूर्जा, शैक्षिक प्रमाण पत्र, औषधि र नगद गहना जस्ता बहुमूल्य सामानहरू वाटर प्रुफ झोलामा राखेर घरको सुरक्षित वा अग्लो स्थानमा राखौं। बाली नाली भित्राउन हतार नगरौं। धान भित्राउने मौसम भए तापनि मौसमको यकिन नगरी कृषि कार्य नगर्नुहोला। काटेको धान भए तत्काल सुरक्षित ठाउँमा सारौं। होचो स्थानमा व्यवसाय भएका व्यवसायीले सुरक्षित स्थानमा सामानको व्यवस्थापन गरौं। विशेष वर्गको ख्याल राखौं। बाढ़ी वा डुबानको जोखिम बढेमा घरका वृद्ध वृद्धा, बालबालिका, गर्भवती महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पहिलो प्राथमिकताका साथ सुरक्षित स्थान वा सामुदायिक आश्रय स्थलमा लैजाने तयारी गरौं। आवश्यक जानकारी तथा सहयोगका लागि वडा अध्यक्ष, नगर प्रहरी, विपद सम्पर्क व्यक्ति तथा सुरक्षा निकाय र सरकारवालासँग समन्वय गरौं। टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर कैलाली।
2: यो खाने मन त कहाँ छ र, तर के गर्नु, जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ, फेरि खानै पर्छ।
3: तपाईँ एक्लो कहाँ छ श्रेया, त्यति माया गर्ने आमा छिन्, दिदी छिन्, भाइ छ, बरु एक्लो त म छु। म पनि पहिले आफूलाई एक्लै सम्झिन्थे, कुलत छुटेपछि पो थाहा पाएँ यो सुन्दर संसार कति सुन्दर रहेछ, बाँच्नुपर्छ अनि को संसारको मजा लिन पाइन्छ।
2: हो र, तेरो त अहिले टन्न कमाइ छ र, त्यसो भन्छ
3: अनि सुधार गृहमा बसेको बेला कसको पो कमाइ हुन्छ त, जब म निस्केँ काम गर्न थाले अनि पो कमाइ छ त, यो कमाइ पनि मेरो लागि होइन, हिजो मेरो कुलतमा हुँदा आमा रुँदै रुँदै जानुभयो, अब घरजम गर्नु छ, श्रीमती छोराछोरी होलान् उनीहरूको लागि पनि सोच्दैछु म।
2: ओहो, तैँले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसकिछ जस्तै यार, अब म पनि कुलत छोड्छु, आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु, भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु।
4: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
0: विश्राम पाछ फेर से स्वागत बा। कैलालीकी टीकापुर नगरपालिका और जानकी गाउँपालिकामा स्थानीय विपद तथा जलवायु उत्थानशील योजना निर्माण के बारे में छलफल हुई बा। प्राक्टिकल एक्शन नेपाल भेरी वातावरणीय विशिष्ट समूह बी ग्रुप के सहकार्यमा यी दुई पालिका के स्थानीय विपद तथा जलवायु उत्थानशील योजना निर्माण करती रहबा। कार्यशाला गोष्ठीमा नेपाल रेडका सोसाइटी कैलालीकी सभापति लोकराज जोशी, विपद के जोखिम हे वित्तीयकरण व समेत जोखिम हस्तांतरण करना आवश्यक रहल बतैती, विपद में राहत समेत दैके केल समाधान नै हुन रहलक ओरसे जोखिम हस्तान्तरण गर्न करके काम गर्न आवश्यक रहल बतैले बाटै विपद व्यवस्थापन केलक आर्थिक प्राथमिकता प्राप्त समेत क्षेत्रमा काम करके जोखिम घटैन सेक्ना बतैती स्थानीय सरकार से विपद के बेला निजी क्षेत्र समुदाय नागरिक संचार दात्री निकाय प्रादेशिक सरकार संघीय सरकार विपद समेत जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति अत्यावश्यक सेवा और विज्ञ लगायत के सहयोग लिए पर्ण बटोले बाटे सक जानकी गांवपालिका के कार्यक्रम में जानकी गांवपालिका के अध्यक्ष गणेश चौधरी संरचना बनाइन बेरफे समेत कहाँ कैसे बनाइन कहना ध्यान दे पर्ना बतोथी समेत बजेट विनियोजन करना काम केलाक महत्वपूर्ण रहल बतोले बाटे वहां पालिकामा विपद सम्बन्धी पंचवर्षीय योजना बनाइन तयारी समेत करल बताइल बा अध्यक्ष चौधरी वाड़ा पालिका मनसे करलक काम संस्थागत करना आवश्यक रहल बतोटी पालिकामा विपद सम्बन्धी काम हे संस्थागत करलसे ऐना दिनमा सहज हुन बतोले बाटे टीकापुर नगरपालिका माफे समेत कार्यक्रममा टीकापुर नगरपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी ममता बास्तोला से विपद व्यवस्थापन केलाक एकीकृत योजना बनाई रखमा पालिका हे सहयोग हुन बतोले बाटे वहाँ स्थानीय तहमा योजनामा छिटकल रलक ओर से काम गर्न कठिनाई हुल के बारे में अब एकीकृत योजना बनाई रखमा पालिका हे सहज हुन रलक ओर से संघ संस्था से फिर पालिका हे करलक सहयोग केलाक धन्यवाद देहल बाटे काल से शुरू हुलक वर्षा आविन फे समेत आजो काल ई क्षेत्र में भारी पानी पर्ना पूर्वानुमान करल पाछे ई बेला स्थानीय पालिका में विपद पूर्व तैयारी के काम करते रहलबा जानकी गांव पालिका के वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख नेत्र प्रसाद जैसी जोखिम न्यूनीकरण करने उद्देश्य से बाढ़ पूर्व तथा तैयारी संबंधी के समय जानकारी समुदाय में रलक विपद व्यवस्थापन समिति बाल संजाल युवा संजाल संगे बैठक छलफल जारी करल बा वहां पूर्व तैयारी के लाख समेत सूचना बनाईना एसएमएस करना फेसबुक पेज में सूचना दर्ना के साथ ही उच्च घर के सरसफाई करना उसका गांव में सूचना करना उसका गांव के काम करते रलक जानकारी देले बाटे वहां सूचना है व्यवस्था समेत नहीं करके पूर्व तैयारी में बैठना धान बाली नहीं कटना अनुरोध के साथ ही बाढ़ अलग समय में बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक धेर जोखिम में हुई रलक ओर से सुरक्षित ठाव धरना तैयारी आग्रह करले बाटे टीकापुर नगर पालिका के वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख निर्मला चौधरी अब टीकापुर में भारी वर्षा हुई सूचना पाइल पास से तैयारी करते रहल बतोजी जोखिम रलक वार्ड नंबर 8 के जैविक तरबन निर्माण हुईलो समेत वार्ड के एक नंबर में धल सरसफाई करना काम होती रहल बटोले बाटे विपद पूर्व तैयारी के लाग पालिका से कर नैसे जोखिम रलक बस्ती सरना तैयारी हुई बाढ़ उदुबान के समेत समस्या समाधान के लाग सकु क्षेत्र में सहयोग आवश्यक रहल बटोले बाटे लगातार के वर्षा संगे कर्णाली प्रदेश के तमाम सड़क फेसम पहरो गिर के यातायात सेवा प्रभावित हुई बा मध्य पहाड़ी राजमार्ग कर्णाली राप्ती राजमार्ग तथा जादरकोट के समेत छेठालहा सड़क में पहरो के कारण अवरुद्ध हुई बताइल बा रुकुम पश्चिम में समेत सानी भेरी गांव पालिका स्थित के मध्य पहाड़ी राजमार्ग के साइना बगर से लेके सिस्नो खोला और के भीर में समेत पहरो गिरला कोर से सड़क पूरा रूप में अवरुद्ध हुई बा सड़क खुलैना डिवीजन वाला कार्यालय उसके चार झारी अंतर्गत के मेसिन परिचालन करगिल कार्यालय के प्रमुख खुम बहादुर भंडारी बटोले बाटे वहां के अनुसार करीब दुई घंटा सम सड़क संचालन में समेत लन्ना लक्ष्य धरगिल बा उसका कर्णाली राजमार्ग अंतर्गत के कालीकोट के शुभकालिका गांव पालिका एक में पहरो गिर के सड़क अवरुद्ध हुई कर्णाली प्रदेश प्रहरी से जनायल बा खोजखर में फिर से विश्राम विश्राम पास फिर से भी सुनते रह सामुदायिक रेडियो टीका प्रेफ एम
4: टीकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
5: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
4: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।
6: बाबु ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
7: मैं नहीं जाऊँ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
6: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
7: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
8: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, हुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल, घाव, खटिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होइति रहल बा।
9: सम्पर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नम्बर 9860071024 ओ 9846-77417।
0: विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा। वीरेन्द्र विद्या मन्दिर क्याम्पसमा टीकापुर के 7 वार्षिक साधन सभा शुरू होइल बा। क्याम्पस सभा से व्यवस्थापन समिति के लाव नेतृत्व चयन गर्न बा। लाव नेतृत्व के लाग अध्यक्ष पदमा दयाराम सञ्जाल, जगदीश पण्डित, ओस्तक धनंजय प्रसाद रिमाल कैकी 3 जहान के उम्मेदवारी परल बा। अध्यक्ष पद के सहमति के प्रयास होइल से फेन ई प्रयास असफल होइल पासे आज बिहान के 8 बजे से लेके 12 बजे सम मतदान हुई न कहल बा। और 8 जने सदस्य केलाग भर निर्विरोध निर्वाचित हो सकल बा। निर्विरोध निर्वाचित हुईनामा महिला सदस्य में रेखा अधिकारी, उसके दलित सदस्य में राजेश कुमार तमत्ता, जनजाति में किशन लाल डंगौरा थारू, उसक 5 जने खुला सदस्य में वीरेन्द्र बहादुर साउत, केशर सिंह ठकुरी, नवीन अधिकारी, धर्म बहादुर विष्ट, पुस्तक छपत बहादुर बुढा निर्विरोध निर्वाचित हुईबाट कलश निर्वाचन अधिकृत दण्ड समेत दण्डपानी पोखरे जानकारी दिनेबाट क्याम्पस व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष महेन्द्र सिंह बम के अध्यक्षतामा हुई क्याम्पस सभा के उद्घाटन सत्रमा राष्ट्रीय सभा सदस्य नारायण दत्त मिश्र प्रमुख अतिथि रहल रहें। विषौं एशियन गेम्स अन्तर्गत पुरूष क्रिकेटमा जापान ओ नेपाल के खेल वर्षाको कारण नतिजा विहीन बनल बा। वर्षाको कारण खेल शुरू हुन समय ढिला हुइल रह कलसे करिब 1 घण्टा ढिला शुरू हुइल खेलमा 15 ओभरमा समेत झारगिल रह। ट्रास हारके पहिल ब्याटिङ के न्यौटा पायल नेपाल से 4 विकेट गुमाके 149 रन बनाइल रह। कलसे जोरा 32 बलमा समेत 57 तथा लोकेश 22 बलमा 52 रन बनाइल रहें। कलश्य अभिजीत रहल रहें। उसके आसिफ शेख 21 रन बनाइल रहें। जापान के लाग रियो साकुरानो थोमस, उसके इब्राहिम ताकाहासी, उसके कुसुदा नारानी, उसके देक्लान, उसके सुकुकी एक एक विकेट लेहल रहे। नेपाल इनिंग ओरैना क्रममा समेत फेर से वर्षा शुरू हुई रह। औसतक जिलबुल कभर के समेत छोपल रह। कलसे वर्षा के कारण दोसरा इनिंग शुरू हुई नहीं सकल। ई नतीजा संगे नेपाल समूह ए मा 2 खेलमा 3 अंक जोड़के विजेता बंटी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करल बा। अफगानिस्तान 2 खेलमा 2 अंक के साथ समेत उपविजेता बनल बा। अस्तका क्वार्टर फाइनलमा नेपाल श्रीलंका सँगै खेल्न बा। कलसे अफगानिस्तान भारत सँगै खेल्न कहल बा। यह समाचार संगे खोज खबर वाइल जेना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से देश के तमाम ठाउँमा वर्षा हुई कुछ स्थान में भारी से लेकर अति भारी वर्षा सतर्क रहना मौसमविद के आग्रह अविरल वर्षा और बाढ़ पहिरो के कारण देशभर के मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध होकर यातायात सेवा प्रभावित वीरेन्द्र विद्या मंदिर कैंपस के सातों वार्षिक साधन सभा शुरू लाओ नेतृत्व चयन के लाख आज मतदान हुई टीकापुर जानकी में स्थानीय विपद तथा जलवायु उत्थानशील योजना निर्माण बारे छलफल लिटा बक्ला थारू भाषक खोज खबर त्रय और समाचार 12 बजे मध्यान्ह खबर समसामयिक व्यापक की खोज खबर से मैं रतन चौधरी विदा हुई सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनते विराम
10: नेपालगंज मेडिकल कलेज में कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कंसल्टेंट न्यूरो साइकोट्रिक डॉक्टर आइनोडिन बागवान
11: यही असोज 17 गते तेस्रो शनिवार का दिन
12: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में आउँदै हुनुहुन्छ त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला
10: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने बडी रिसाउने झिझो मान्ने बरबराउने अमिलो व्यवहार गर्ने कामकाजमा मन नलगाउने एक्लै बसेर टुलाउने भोक नलाग्ने निन्द्रा नलाग्ने दुब्लाउँदै जाने धेरै रक्सी खाने लागू पदार्थ सेवन गर्ने
12: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी छारे रोग मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या नकारात्मक सोचाइ आउने यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोस्
11: डाक्टर आउने दिन यही असो 17 गते तेस्रो शनिबार
13: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ याद गर्नुहोस् आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ सम्पर्क फोन नम्बर 9868080008 र 9825377072
14: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी सँग सहकार्य गरौं
15: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि
16: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो
15: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त
16: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला
17: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला सम्पर्क नम्बर 9854899213 इमेल ocmcticapur@gmail.com
18: जापानी इन्सेफलाइटिस रोग सम्बन्धी स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीको अत्यन्त जरुरी सूचना
19: जापानिज इन्सेफलाइटिस मस्तिष्कमा संक्रमण हुने लामखुट्टेको टोकाईबाट सर्ने भाइरल रोग हो यो रोग जुनसुकै उमेरका मानिसहरूलाई लाग्न सक्छ तर धेरै जसो 15 वर्ष मुनिका बाल बालिकामा देखिन्छ
20: यो भाइरसबाट संक्रमित हाँस कुखुरा जस्ता चरा चुरुङ्गी र सुँगुर बंगुर जस्ता जनावरहरूलाई लामखुट्टेले टोक्यो भने सो लामखुट्टे संक्रमित हुन्छ र ती संक्रमित लामखुट्टेले मानिसलाई टोकेमा यो रोग मानिसमा लाग्दछ तर यो रोग मानिसबाट मानिसमा भने सर्दैन यो रोग विशेष गरी साउनदेखि कार्तिकसम्म देखिन्छ
19: जापानिज इन्सेफलाइटिस रोगको लक्षण तथा चिन्हहरू
20: बेसरी टाउको दुख्ने
19: उच्च ज्वरो आउने बेहोस हुने
20: घाँटी अररो कडा हुने
19: कम्पन हुने
20: पक्षघात हुने
19: र समयमा उपचार नभएमा बिरामीको मृत्यु समेत हुन सक्छ
20: जापानिज इन्सेफलाइटिसबाट बच्ने उपायहरू
19: लामखुट्टेको टोकाईबाट बस्नु नै यस रोगबाट बस्ने प्रमुख उपाय हो।
20: हाँस, कुखुरा, सुंगुर, बुंगुर जस्ता घर पालुवा चराचुरुङ्गी जनावरहरूलाई व्यवस्थित ढंगले घरदेखि टाढा खोरमा राखेर सुरक्षित तरिकाले
19: घर बाहिर निस्कदा खेतबारीमा काम गर्दा पुरा बाउला भएको कपडा लगाऊ।
20: घरको झ्याल ढोकामा जाली राख्ने, पानी जम्ने ठाउँमा लामखुट्टे वृद्धि हुने भएकोले घर वरिपरि पानी जम्ने खाल्डा खुल्डी पुरी दिने गरौं।
19: लामखुट्टे भगाउने धूप वा मलम प्रयोग गरौं।
20: सधैं झुल टाँगेर सुत्ने गरौं।
19: याद गर्नुहोस्, यो रोगबाट बस्नका लागि 12 महिनाको उमेरमा जेई खोप लगाउनु पर्छ। यदि यो खोप लिन छुटेको छ भने 5 वर्षको उमेरसम्म पनि जेई खोप लगाउनु पर्दछ।
1: स्वास्थ्य कार्यालय कैलाली।

0: सुरक्षित जीवन जिउन जीवन बीमा जरुरी छ। रिलायबल लाइफ सधैँभरिलाई।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: कापिए रही था कभी पेंसिल ले रही था कभी झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा फिर उस टपाटीन गटीलो ठाउं से झोला आनले से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी जरम भर भर भर आई थी राहत
0: का हुई कभी लड़का कभी हेरा कही था कभी पेंसिल हेरा कही था कभी झोले फटाका आई था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिकटो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: कामदार आवश्यकता सम्बन्धी सूचना
4: काठमाडौँ स्थित घरेलु कामदारका लागि एकजना पुरुष र एकजना महिला तथा सिन्धुपाल्चोकका लागि एकजना कामदार तत्काल आवश्यक परेको हुँदा इच्छुक तथा योग्य व्यक्तिहरूले सम्पर्क गर्नुहोला
3: कार्यस्थल काठमाडौँ तथा सिन्धुपाल्चोक आवश्यक संख्या पुरुष एकजना महिला एकजना तथा अन्य एकजना सम्पर्क फोन नम्बर 98541-00725 इच्छुक व्यक्तिहरूले समयमै सम्पर्क गर्नुहोला

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आन लसे तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रख गया झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गया झोला उद्योग में रख गया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: पैसा तथा पर्स भेटिएको सूचना टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर एक जमरा पारी मेन्थादेखि समितिपुर जाने बाटोमा मेरीगोल्ड स्कूलको बसमा विद्यार्थी पुर्याउन जाने क्रममा केही दिन अघि बेलुका 4 बजेतिर कालो पर्स औषधि र केही पैसा भेटिएकाले सम्बन्धित व्यक्तिले लोकबहादुर सारु मगरको मोबाइल नम्बर 97 44 28 72 02 वा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएममा सम्पर्क गरी बुझी लैजान हुन अनुरोध गरिन्छ। पैसा दावी गर्ने व्यक्तिले पर्समा रहेको जम्मा रकम भन्न सक्नु पर्नेछ।
4: आज तिमी मेरो वरिपरि किन घुम्दैछौ छोरी?
5: आमा मलाई सिक्री बनाइदिनुहोस् न, लाउन कस्तो रहर लाग्छ।
4: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी, फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले
5: मेरो खुत्रुके छ नि आमा, मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु, फेरि सुन त पछि पनि काम लाउन सक्यो नि।
4: कुरा राम्रै हो छोरी, तर कसकोमा जाने हो त?
5: न्यू असम जालपा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ, अस्ति नै हेरिसके मैले त।
6: न्यू असम जालपा देवी ज्वेलर्स सिद्धार्थ चोक टीकापुर, न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्समा नयाँ नयाँ डिजाइनका विभिन्न गरगहनाहरू माइली तिलहरी हार झुम्का छड्के तिलहरी बाला चुरा चन्द्रमा जन्तर चन्द्रहार इन्डियन मंगलसूत्र औठी सिक्री बिनारसनका गरगहनाहरू पाइन्छन्। साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन्। अछाम मंगल सैनको शाखा टीकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ। प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार, फोन नम्बर 98-688-14-799 98-24-60-25-32 अछाम मंगल सैनका लागि ध्रुव सिंह सुनार गोपाल सुनार, फोन नम्बर 98-24-67-28-25
7: जान छै उडन चरी दिन रात भौतारी आई गयो रेडियो खोल देउडा चौतारी आई गयो रेडियो खोल देउडा चौतारी
8: झल्को आउँदो बाह्रै मास दिन काटु म क्यारी बाटो हेरी बस्याकी छ घर मेरी प्यारी
7: एकडाली बाजगुर आउँछको एकडाली साजको यति सौराई क्या लाग्दो छ परदेशी बाजको यति सौराई क्या लाग्दो छ परदेशी बाज

0: लाउन साह्रै भोक लाग्यो भने आज त तन्नै नास्ता गर्न मन लागिरहेछ। होइन, यो टिकापुर बजारमा मिठो चिकन राइस कहाँ पाइन्छ होला?
1: साँच्चै हो र भोक लागेको, मलाई पनि चिकन चाउमिन खान मन लागेको छ। त्यसो भए जाउँ न लक्ष्मी कटेजेन खाजा घरमा, त्यहाँ त एकदम शुद्ध, सफा र मिठो परिकारहरू पाइन्छ।
0: ए हो र, त्यसो भए जाउँ न, जाउँ, सँगै जाउँ, तन्नै खाएर आउला।
1: तपाईँलाई पनि नास्ता खान मन छ भने लक्ष्मी कटेज एन्ड खाजा घरलाई सम्झिनुहोस्। लक्ष्मी कटेज एन्ड खाजा घरमा चिया, नास्ता, चाउमिन, चिकन राइस, चिकन चाउमिन, छोला समोसा, दुध, दही, घिउ, चिसो लगायतका विभिन्न किसिमका खाजाको आइटम पाइन्छन्। एकचोटि सेवा गर्ने मौका दिनुहोला।
0: लक्ष्मी कटेज एन्ड खाजा घर, सामुदायिक एफएम नजिकै, प्रोप्राइटर लोकराज खनाल, सम्पर्क नम्बर 9848569964।
2: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? पाछा से शुरू करल मने घर सिजार सेक्ल।
3: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू, मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का?
2: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना, पट्टा सुगुर बनेल बाट, आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना, वट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो होना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
4: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
3: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली, प्रोप्राइटर मोहन राज भाट, मोबाइल नंबर 9848513426।
5: सूचना सूचना सूचना, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार बंगालको खाड़ीको पूर्वी भाग तथा उत्तर अण्डमान सागर आसपास विकसित न्यून चापीय प्रणालीका कारण असोज 8 गते बिहिबारदेखि 12 गते सोमबारसम्म सुदूरपश्चिम तथा मध्य नेपालका विभिन्न स्थानमा धेरै भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। सम्भावित बाढी, डुबान तथा अन्य विपदबाट सुरक्षित रहन
6: टिकापुर नगरपालिका
5: सम्पूर्ण नगरवासीमा विशेष सतर्कता अपनाउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछ। नदी, खोला, नहर तथा जोखिमयुक्त क्षेत्र नजिक नजानुहोस्। बालबालिकालाई यस्ता स्थानमा खेल्न वा जान नदिनुहोस्। गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दीर्घ रोगीको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुहोस् र आवश्यक परे सुरक्षित स्थानमा सार्न सहयोग गर्नुहोस्। नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, लाल पूर्जा, नगद औषधि, मोबाइल, रेडियो, टर्च लाइट लगायत आवश्यक सामग्री सुरक्षित झोलामा तयारी अवस्थामा राख्नुहोस्। बाढ़ी तथा मौसम सम्बन्धी जानकारीका लागि निशुल्क टोल फ्री नम्बर 1155 सम्पर्क गर्नुहोस् तथा आधिकारिक सूचना स्रोतको नियमित जानकारी लिनुहोस्। जोखिम बढेमा स्थानीय तहको निर्देशन पालना गर्दै सुरक्षित स्थानमा जानुहोस्। आवश्यक परेमा एम्बुलेन्स लगायतका सेवा
6: टिकापुर नगरपालिकाबाट
5: निशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। सतर्क रहौं, सुरक्षित रहौं। अनुरोधक, संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को आर्थिक सहयोग तथा सप्रोस नेपालको सहजीकरणमा
6: टिकापुर नगरपालिकाद्वारा जन

0: कार्यक्रम मझेरी
1: मझेरी मझेरी।
2: भैया ना करा रेडू बिगड़ी
3: नहीं का मम्मी टीकापुर FM से मझेरी कार्यक्रम एक लगवा का
0: थारू गीत के बहार प्रतिभा आने अपने के मन में जोन प्रतिभा आई था वो प्रतिभा सुनाई लग आई कोई गीत गजल भावना मुक्तक चुटकिला शायरी शेर कोई भी नेतन के कैरिकेचर चिड़े चुरुंगर जानवर की आवाज कोई भी चीज कोई प्रतिभा अपने में बा कल सुनाई लग हम फोन करी साता के बिहार दिन के 1 बजे से 1:45 बजे हम 091-561-255 में डायल करे ना भूलेगी केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz में कार्यक्रम मझेरी मई मिशन के साथ में सुने ना भूलेगी।

0: अरेला सुन चाँदी पसलमा छड्की तिलहरी माइली तिलहरी रानी हार हार मंगलसूत्र चक्की पेन्डल बाला औठी चन्द्रमा काँटा नौगेडी जस्ता विभिन्न डिजाइनका गरगहना अर्डर गरे अनुसार सुपट मूल्यमा बनाइन्छन्। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
1: अरेला सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक टिकापुर एलएन मेडिकल अगाडि संचालक खुमराज सुनार। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9810625347।

0: बुका पिए रही था, कभी पेंसिल ले रही था, कभी झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के वस्त पाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई, कभी लड़का कभी हेरा कही था, कभी पेंसिल हेरा कही था, कभी झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गोर झोला आनल बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन, ये बुढ़ोक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई।
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रत गैया झोला उद्योग में, रत गैया झोला उद्योग, हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोफ राइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: बहनी घर में बट्टी को सामान चाहिए थी, कहाँ बाटा किन्ने होला, किन टाड़ा जानु दीदी, जमारा पारी पेट्रोल पंप अगाड़ी न्यू ओम बिजुली भंडार सप्लायर छ नि, त्यहाँ घर तथा पसल का लागि चाहिने विभिन्न विद्युतीय सामान पाइन्छन्।
4: ए हो र, त्यहाँ कस्तो कस्तो सामान पाइन्छन्?
3: त्यहाँ त हाउस वायरिंग सम्बन्धी सम्पूर्ण सामानहरू, विभिन्न ब्रान्डका तार, एसी, पंखा, हिटर, गिजर, मोटर तथा हाउस वायरिंग सम्बन्धी पाइने एकमात्र न्यू ओम बिजुली भण्डार छ नि।
4: त्यसो भए अब बिजुलीका सामान किन्न अन्त कतै जानै परेन।
3: हो नि, तपाईँलाई पनि घर कार्यालय वा पसलका लागि बिजुलीका सामान चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्।
4: न्यू ओम बिजुली भण्डार सप्लायर्स, जमरापारी पेट्रोल पंप अगाडी, संचालक राम बहादुर चन्द, संपर्क नंबर 98484-59-67-33 र 98-51-18-82-46।
5: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो,
6: जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या, ब्याट्रीकै समस्या,
5: यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला, टेन्सनमा भए म त। अब
7: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्रेक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
5: ए, यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ, कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
7: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
0: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
5: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
8: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्रेक्टर, बस, ट्रक, टिफर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी,
7: सम्पर्क नम्बर 0915604670 र मोबाइल नम्बर 98-48-57-18-28।

0: एल्विस एल्विरा टेरसमा डिजाइन डिजाइनका साडी, सुट, कुर्ती, पलाजा तथा थानका कपडाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छन्। एकचोटि सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला।
1: एल्विस एल्विरा टेरस, सिद्धार्थ चोक गालप सुपरमार्केट अगाडि टिकापुर कैलाली, संचालक सुजिता श्रेष्ठ, सम्पर्क नम्बर 9811638887।
2: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम, 101 मेगाहर्ज।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैं भरी लाए।
1: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: हेलो
1: हेलो।
0: मजा बाटू।
1: हाँ ठीक है बा, 8 दिन का है नहीं लौटा।
0: मोर ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलता तो तब आई नहीं पैनु। मैं तो जल्दी आइकला रहूं। एक ठो खुशी बाट बा, काल आई तू मई तब भेटब मजा से।
1: काल

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमके सन्ध्याक 5 बजेक थारू भाषक खोज खबरमा आफ्नकन स्वागत बा। खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम। अपनौक्राब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप से हाम्रो पात्रो और नेपाली पात्रो मफे सुनती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। पानी पर्ना प्रणाली पूर्व से पश्चिम सर्ती सुदूरपश्चिम कालसम्म वर्षा हुना। बाल बालिका सन्तुष्ट बनाई दिवा खाजा मेनू वीरेन्द्र विद्या मंदिर कैंपस व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष में धनंजय रिमाल विजयी। लगातार वर्षा पाछ सुदूरपश्चिम के डोटी डडेलधुरा बैतटी दारचुला बाजुरा में सवारी आगमन में रोक। ओ वर्षा के कारण दुईजना के जान गेल 29 थो सड़क अवरोध। हाल देशभर मनसूनी वायुके संग पश्चिमी वायुके फे आंशिक प्रभाव रहल बा। संग भारत के उत्तर छत्तीसगढ़ तथा उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश मन रहलक न्यून चापीय प्रणाली उत्तर पश्चिम सर्ती भारत के दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश उहर जैना व ऐना 12 घण्टा मन कर्मश कमजोर होकन न्यून चापीय क्षेत्रमा परिणत हुने सम्भावना रहलक मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनैला बा। हाल देशभर अधिकांश बद्री लागल बा। गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली व सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धिर ठाउँ तथा बागमती प्रदेश के कुछ ठाउँमा सँग कोशी व मध्य प्रदेश के डान्चे ठाउँमा हल्का थेसे मध्यम वर्षा हुइतिरहल बा। आबकी वर्षाकी अवस्था यारबेर पूर्व से पश्चिम उहर सर्दी गैलक उहरसे मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनैला बा। आज रात का फे सुदूरपश्चिम प्रदेश सहित देश के पश्चिम क्षेत्र मन वर्षा हुना देख गिलक ओ ई क्षेत्र मन भारे पानी निपल से फे मध्यम वर्षा के संभावना हुईलक देख गिलक उहरसे सचेत रह नागरिक हन। मौसमविद संजीव अधिकारी आग्रह कर्लबाट वर्षा हुईल पाछ कर्णाली लद्यामा फे जल सतह बढ़ल बा। कर्णाली चिसा पानी मन दिनक 4 बजे के रेकर्ड अनुसार जल सतह 7 मीटर 46 सेन्टीमीटर पुगल बा। कर्णाली चिसा पानी में 10 मीटर चेतावनी तह व 10 मीटर 80 सेन्टीमीटर पुग्ना तटीय क्षेत्र के लागि खतरा तह मान्जेट। सरकार सरकारी विद्यालय में पढ़ना कक्षा 5 सम्म के बाल बालिका के लागि दिवा खाजा के लाग अरबौं खर्च करलसे फे खाजा खाइना हुक्र असन्तुष्ट देखगिल्बा। सरकार खाजा बाफत प्रति विद्यार्थी 20 रूपियाँ देना कलबा तर विद्यालय मन अवस्था अनुसार के व्यवस्था हुना करलबा। कतरा विद्यालय मन हमेशा भुटलक मकई हलुआ गेरागुटी हुना करलबा कलसे खाजा पकाइबेर भान्से अभाव होकन भाड़ाकुरा के अभाव जसिन समस्या देखाकन खाजा पसल से पोका पार्कन मंगैना करलक फे पागिल्बा। प्रधान अध्यापक को शिक्षक सक्रिय हुना विद्यालय मन मजा खाजा फे खवटी रहलबाट। कर्णाली मावि टीकापुर के प्रधान अध्यापक धर्मराज शर्मा साप्ताहिक रूप मन सूची बनाकन खिचड़ी छोला मासु भात अण्डा व स्याउ खवैना कलक तर अण्डा व स्याउ पैलक दिन एक कठो कलहक पर्ना हुईलक उहरसे अघाई निसेकलक बटुलाबाट। खड़क स्मृति मावि के प्रधान अध्यापक जनकराज ओझा आलू चिउरा खिचड़ी फलफूल चना ओ अंडा मकई मिक्स चिउरा ओ महीना के एक दिन मासु फे खुवाइना कलक बटुलाबाट। ध्यूर विद्यार्थी विलक विद्यालय मन मजा खाजा देना कलक तर दान्चे विद्यार्थी विलक को अन्य स्रोत निहुलक विद्यालय मन सामान्य खाजा देना कलक विद्यालय के प्रधान

0: लागू करना वो गुणस्तर कायम कर पर्ना आवाज उठी रहलबा टीकापुर नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकृत कमल बहादुर रावल पैसा कम हुईले सेफे परिणाम कम हुईना हुईल सेफे दीवा खाजा गुणस्तरी हुई पना बटुलाट शिक्षा अधिकृत नरेश अवस्थी दीवा खाजा से विद्यार्थी के टिकाऊ दर बहरलक पोषण बहरलक भोग कम करलक उमर से सिकाई उपलब्धि बहरलक बटुलाट बाल बालिका के क्षेत्र में काम करती रहलक संस्था विकास के लिए युवा एकबद्धता यार्ड खाजा के एक रूपटा व गुणस्तर चहना पालिका मन दीवा खाजा के मेनू बनाए छलफल आयोजना करना करलबा यार्ड के पहल मन कैलाली के घोड़ाघोरी नगर पालिका व भजनी नगर पालिका में खाजा के मेनू तैयार होकर लागू हुई टीरलक बाल समृद्धि के लाग एकीकृत विकास परियोजना के कार्यक्रम संस्कर्ता रतनलाल चौधरी बटुलाट कैलाली के अन्य पालिका जस्ता टीकापुर में फिर दीवा खाजा मन एक रूपटा गुणस्तर कायम कर हुईलक छलफल से मेनू तैयार कई गिलबा टीकापुर के लागी बनलक मेनू अनुसार सोमवार खिचड़ी विकल्प मन हलुआ मंगलवार फलफूल विकल्प म दही चिवरा वा आलू चिवरा बुधवार हलुआ वा खीर वा समोसा विकल्प म फलफूल बिहीबार अंडा वा मासु चिवरा विकल्प म जीरा राइस शुक्रवार केरा गुड़ी विकल्प म पकौड़ा ढेकिल्बा नगरपालिका के जनप्रतिनिधि शिक्षा महिला बाल बालिका स्वास्थ्य शाखा के प्रमुख तथा जनप्रतिनिधि हुक्र विद्यालय के प्रधानाध्यापक हुक्र भान्से सहयोगी हुक्र सहभागी भेलासे विद्यालय हुक्र आब खैटी रलक खाजा हन बार अनुसार खैना सहमति कर्लबाट टीकापुर स्थित वीरेन्द्र विद्या मंदिर कैंपस व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष में धनंजय प्रसाद रिमाल विजय हुईलट रिमाल 37 मत प्राप्त करती विजय हुईल फिट निर्वाचन अधिकृत दंड पानी पोखरेल के अनुसार अध्यक्ष के प्रतिस्पर्धी दयाराम संज्याल 9 व जगदीश्वर पंडित 5 मत प्राप्त करलबाट कुल 74 जना मतदाता रहलक निर्वाचन में 52 मत खसल रह अध्यक्ष में निर्वाचन हुईल से फिर अन्य सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुईल रह सदस्य में महिला उहर रेखा अधिकारी दलित उहर राजेश कुमार टमाटा जनजाति उहर किशनलाल डंगौरा थारू सर्वसम्मत हुईलट खुला 5 जना सदस्यतर्फ वीरेन्द्र बहादुर साउट केशर सिंह ठकुरी नवीन अधिकारी धर्म बहादुर विष्ट व झपट बहादुर बुढ़ा चयन हुईलट खोज खबर में एक घड़ी विश्राम विश्राम पा चयनिनीटी सुनती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: सुन्नुहोस् न यसपाली नयाँ गहना किन्ने सोच बनाएकी छु सिर्चाना सुनचाँदी पसलमा जाऊ न त्यहाँ आकर्षक डिजाइनका सुनचाँदीका गहना पाइन्छन् रे
2: ए हो र गुणस्तरीय गहना र उचित मूल्य पनि हुन्छ त
1: हुन्छ नि आफूलाई मन परेको डिजाइन छान्न पनि पाइन्छ अनि विश्वासिलो सेवा पनि
2: त्यसो भए आजै जाउँला नि
1: ल अरूलाई पनि भनौँ है
2: सुनको चमक आकर्षण र विश्वासको साथका लागि सम्झनुहोस्
1: सिर्जना सुन चाँदी पसल तपाईँको रोजाई हाम्रो जिम्मेवारी
2: सिर्जना सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक नगरपालिका शिव मन्दिरबाट सरकारी अस्पताल जाने बाटोमा सञ्चालक रूपलाल सुनार सम्पर्क नम्बर 98095443
3: आज भोलि दिनहुँ जसो सड़क दुर्घटनाका घटनाहरू बढ़िरहेका हुनाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बाटोमा हिँड्दा बाटोको एकछेउ भएर हिँड्ने बाटो काट्दा अगाडि र पछाडि हेर्नुका साथै इशारा गरेर मात्र बाटो काट्ने साइकल होस् या गाड़ी चलाउँदा न्यूनतम गतिमा हाँक्ने गरौं कतिपय दुर्घटना आफ्नो नभई अरूको लापरवाहीका कारण पनि घट्ने हुनाले बाटोमा हिँड्दा सजग भएर मात्र हिँड्ने गरौं साथै आफ्ना नानी बाबुहरू तथा घरपालुवा जनावरलाई बाटोमा छाड नछोडौं र आकस्मिक हुने यस्ता दुर्घटनाबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाऊ
4: जानकी गाउँपालिका एक नम्बर वाडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
5: के तपाईलाई थाहा छ
6: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ
5: हो र
6: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
5: अनि
6: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं
5: के छ त विकल्प?

0: बोक्दा कपड़ाको झोला प्रयोग गरौं। पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
0: अहँ, हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
0: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
2: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार सत्कार पोलिक्लिनिक प्रणाली टिकापुरमा।
3: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने।
2: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
3: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
2: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
3: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
2: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
3: ईसीजी सेवा,
2: डिजिटल एक्सरे सेवा
3: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
2: फोन नम्बर 98484 27359 र 98482 73 59। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपा देवी मन्दिर नजिकै।
4: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्र संघकै 21 महासभा मन सहभागी होकन आज स्वदेश फिर्ता हुलबाट। महासभामा उहाँ नेपालमा हालै ऐलक भोटेकोशी त्रिशुली बाढ़ी जलवायु परिवर्तन से निम्तैलक संकटकै उदाहरणकै रूपमा प्रस्तुत कलबाट उहाँ जलवायु न्याय आर्थिक रूपमा आर्थिक सहयोग मन कलहक सीमित नै ढैकन हिमाली समुदाय साना टापु राष्ट्र ओ भूपरिवेष्टित देशकै आवाज सम्मान महत्व दिएपना बटुलेबाट। लगातार हुइतिरलक वर्षाकै कारण सम्भावित जोखिममा मध्यनजर कटी डोटी डडेलधुरा दार्चुला बाजुरा डोटीमा सवारी आगमनमा रोक लगागिल्बा। डडेलधुरा जिल्लामा न लम्मा तथा छोटी दूरीकै सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगागिलक हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेलधुरा सूचना जारी गर्दै आज असोज 10 गते बिहान 7 बजे से असोज 11 गते बिहान 7 बजेसम्म सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगैलक जनैलक हो। लगातारकै वर्षाकै कारण बाढ़ी पहिरोकै जोखिम बढ़ल्पा छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीमा फेर काल बिहान 6 बजेसम्मकै लागि सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगागिल्बा। भारी वर्षाकै सम्भावना रहलक महर्से। दार्चुला जिल्ला भरफे सार्वजनिक सवारी साधनकै आगमनमा पूर्ण रूपमा रोक लगागिल्बा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुला सूचना जारी गर्दै आज थेसे असोज 11 गते बिहान 6 बजेसम्म जिल्लाभर सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगैलक जनैलबा। लगातार वर्षापाछ बाजुरामा न आइतबार बिहानसम्म सवारी सञ्चालनमा रोक लगैलबा। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण जारी कलक मौसमी जोखिम सम्बन्धी पूर्व सूचनाकै आधारमा डोटीमा न 24 घण्टाकै लागि सक्कु सवारी साधन सञ्चालनमा न रोक लगाइकिल्बा। लगातार दुई दिन थेसे वर्षा हुइल्पा छ। बाढ़ी पहिरोके जोखिम बढ़ल्पा छ। कञ्चनपुरके दोधरा चाँदनी नगरपालिका 8 झरका टोलके 5 परिवार विद्यालयमा सारगिल्बा। बाढ़ी से जोगबुढ़ा लड्डेक जोखिममा हुकनहन सरसमान सहित जनज्योति माध्यमिक विद्यालयमा सारगिलक हो। यीसे आग दोधरा चाँदनी 3 पटेरा खल्लाके 14 परिवार फे नमूना आधारभूत विद्यालयमा सारगिल रह। दोधरा चाँदनी नगरपालिकाकै मेयर किशोर कुमार लिम्बू उच्च जोखिममा रहलक परिवार पालिका से खानपिनकै व्यवस्था करगिलक बटुइलबाट। वर्षाकै कारण ऐलक बाढ़ी पहिरो हो। हावाहुरीकै कारण देशभरमा 2 जनाकै ज्यान गइल्बा। 1 जना बेपट्टाबाट, 1 जना घाइते हो, 5 जनाकै घरमा क्षति पुगलबा। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण देलक जानकारी अनुसार शुक्रबार ऐलक वर्षाकै कारण देशकै विभिन्न भागमा क्षति हुइलक हो। मृत्यु हुनामा धादिङकै 1 जना वा डोल्पाकै 1 जना रहलबाट प्राधिकरणकै प्रवक्ता शान्ति महत बटुइलबाट। प्रवक्ता महतकै अनुसार डोल्पाकै त्रिपुरा सिन्धेरी नगरपालिका वडा नम्बर 7कै 33 वर्षीय मनरूप केसीके गाई गोठ मन सुतिरलक अवस्थामा भीरमसे पठा खसबेर उहाँ हन लागल रह। उहाँ गम्भीर घाइते हुइल्पा छ। स्थानीय स्वास्थ्य चौकी लैजिती करबेर ज्यान गइलक हो। सोह सोही घरमन सुत्ती रोलक 38 वर्षीय चन्द्र रूप केसी घाइते हुइलबाट धादिङके बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 55 वर्षीय सुकुमाया चेपाङ हन खानी खोलवाता नाकरम खोलवा बगा कलैगिल रह मलेखु स्थित अस्पतालमा उपचारके क्रममा चेपाङके मृत्यु गैलखो पहिरोमा पर्क पाल्पा रूपडीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 6 59 वर्षीय कृष्ण कुमारी सारू शनिबार दिनके 2:45 बजे थिसे बेपत्ता हुइलबाट पहिरोसे घर पुर्गिलपाछ सारू हालसम्म सम्पर्क विहीन रहलक प्राधिकरणसे जनागिलबा वर्षाके कारण पाल्पाके रूपडीकोट गाउँपालिकाके 2 घर पुनरूपण क्षति पुगलबा पहिरोके कारण पुर्कन स्थानीय केशुराम सारू मगर ओ रामबहादुर उचाईके घर मन क्षति पुग्लखो ओस्तकन 5 थरके हिल्ली ह्याङ गाउँपालिका 3 धनप्रसाद योङ ह्याङके घर धल्क पूर्ण रूपमा क्षति हुइल्बा डोलक ओखलढुङ्गाके सिद्धिचरण गाउँपालिका वडा नम्बर 2 भीमबहादुर कार्कीके घर के गाह्रो भटकल्बा ओस्तकन छामके तुर्माखाट गाउँपालिका 4 हावाहुरीके कारण कच्ची घरके जस्ता पाटा उरागिल पाछ हुकनके घर परिवार छिमेकके घरमा न बत्ती रहलबा निरन्तर वर्षाके कारण ऐलक बाढ़ी पहिरो लेदो सहितके बहावसे देशके विभिन्न परदेश जोड़ना प्रमुख राजमार्ग तथा सहायक सड़क खण्ड अवरूद्ध हुइल्बा प्राधिकरण उपलब्ध करागिलक विवरण अनुसार कुल 29 थो मुख्य सड़क खण्ड प्रभावित हुइल्बाट प्राधिकरणके अनुसार कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी ओ कर्णाली प्रदेशके अधिकांश मुख्य राजमार्गमा सवारी आगमन ठप्प हुइल्बा कोशी प्रदेशके सुनसरी पाँचथर इलामो सोलुखुम्बु क्षेत्रके चतरा बहार क्षेत्र मध्य पहाड़ी लोकमार्ग राके रवि भेडेतार मेची करिडोर तथा सिद्धिचरण लोकमार्ग पहिरोके कारण पूर्ण रूपमा अवरूद्ध हुइल्बा बागमती प्रदेशके काठमाडौँ उपत्यका जोर्ना पृथ्वी राजमार्गके विभिन्न खण्ड कृष्णभीर टिटराखानी परेवाटार क्रान्ति लोकपट मदन भण्डारी अर्नीको राजमार्ग बीपी राजमार्ग ओ कुलेखानी सिस्नेरी खण्ड पहिरो तथा बाढ़ीके कारण प्रभावित हुइल्बा अर्नीको राजमार्गके धुलीखेल पच्चुका खण्ड एकतर्फी सुचारू रहल्बा गण्डकी प्रदेशके मनाङके च्यामे बेसी शहर खण्ड म्याग्दीके बेनी जोमसोम सड़क ओ पर्वतके पोखरा बेनी बागलुङ सड़क पहिरो तथा रूखवा ढललके कारण अवरूद्ध हुइलबाट लुम्बिनी प्रदेशके कालीगण्डकी करिडोर मदन भण्डारी राजमार्ग स्यालबिसौनी बिसौना सिद्धार्थ राजमार्ग केराबारी ओ घोराही ठवाङ सहित मार्ग पहिरोके कारण ठप्प हुइलबाट कर्णाली प्रदेशके कालीकोटके शुभकालिका स्थित कर्णाली राजमार्ग ओ सल्यानके कपुरकोट स्थित राप्ती राजमार्ग पहिरोके कारण बन्द रहलबाट सड़क विभाग तथा सुरक्षा निकायके टोली पहिरो पन्छैना ओ अवरोध राजमार्ग हन पुनः सञ्चालनमा लन्ना कार्यमा निरन्तर खटिरलक प्राधिकरण जनैलबा सर्वसाधारण सड़कके स्थिति बुझ्क कलहक यात्रा कर प्राधिकरण अनुरोध कलबा खोज खबरमा फेरफे विश्राम विश्राम पाछा निनीबाटी सुन्ती रहे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम
3: टिकापुर नगरपालिका विपद व्यवस्थापन समितिको सम्भावित भारी वर्षा र बाढ़ी सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना आदरणीय नगरवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमान अनुसार आउँदो असोज 9 बजेदेखि 11 गतेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत यस क्षेत्रमा बढ़ी अथवा धेरै भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। टिकापुर नगरपालिका कर्णाली नदी र स्थानीय नदी कुलाहरूको तटीय क्षेत्रमा अवस्थित भएकाले अत्यधिक वर्षाका कारण आकस्मिक बाढ़ी डुबान र कटानको उच्च जोखिम देखिएको छ। तसर्थ धनजनको क्षति हुन नदिन सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा विपद व्यवस्थापन समिति हार्दिक अपील गर्दै निम्न बमोजिम सतर्कता अपनाउन अनुरोध गर्दछौ। मुख्य सावधानी तथा पूर्व तयारीका उपायहरू नदी किनारमा नजाउ बाढ़ीको समयमा माछा मार्न काठ दाउरा संकलन गर्न वा पौडी खेल्न कर्णाली नदी र स्थानीय खोला खहरेहरूमा नजाउ महत्वपूर्ण कागज तथा सामान सुरक्षित राखौ आफ्नो नागरिकता जग्गाधनी पूर्जा शैक्षिक प्रमाण पत्र औषधि र नगद गहना जस्ता बहुमूल्य सामानहरू वाटर प्रुफ झोलामा राखेर घरको सुरक्षित वा अग्लो स्थानमा राखौ बाली नाली भित्राउन हतार
5: नगरौं। धान भित्राउने मौसम भए तापनि मौसमको यकिन नगरी कृषि कार्य नगर्नुहोला। काटेको धान भए तत्काल सुरक्षित ठाउँमा सारौं। होचो स्थानमा व्यवसाय भएका व्यवसायीले सुरक्षित स्थानमा सामानको व्यवस्थापन गरौं। विशेष वर्गको ख्याल राखौं। बाढ़ी वा डुबानको जोखिम बढेमा घरका वृद्ध वृद्धा, बाल बालिका, गर्भवती महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पहिलो प्राथमिकताका साथ सुरक्षित स्थान वा सामुदायिक आश्रय स्थलमा लैजाने तयारी गरौं। आवश्यक जानकारी तथा सहयोगका लागि वडा अध्यक्ष, नगर प्रहरी, विपद सम्पर्क व्यक्ति तथा सुरक्षा निकाय र सरकारवालासँग समन्वय गरौं। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर कैलाली।
6: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? पाछसे शुरू करल मने घर सिजार सेकल।
7: अरे का करूरी बुढिया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू। मिलबो मिलबो नि करत का कैना हो का
6: मिस्तरान बर्जन हो कना घर हेरो ना पटा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्रफे पटानी हुई कि गोंगुआ बुढो हो ना कबू कहूँ घुम जाए था पाए।
8: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
7: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848543426।
9: नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कन्सल्टेन्ट न्यूरोसाइकोट्रिक डाक्टर आइनोडिन बागवान
10: यही असोज 17 गते तेस्रो शनिबारका दिन
11: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
9: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने, बढी रिसाउने, झिजो मान्ने, बरबराउने, अमिलो व्यवहार गर्ने, कामकाजमा मन नलगाउने, एक्लै बसेर टुलाउने, भोक नलाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, धेरै रक्सी खाने, लागू पदार्थ सेवन गर्ने,
11: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने, स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी, छारे रोग, मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या, नकारात्मक सोचाइ आउने, यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोला।
10: डाक्टर आउने दिन यही असोज 17 गते तेस्रो शनिबार।
12: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म। बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर। टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस्, आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क फोन नम्बर 9868080008 र 9825637772।
4: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। निर्वाचन आयोग विदेशमा रहलक नेपाली नागरिक मतदानमा सहभागी गराइना विषयमा विभिन्न माध्यम से आईएमसी छलफल चलैति रहल बा। विदेशमा रहलक नेपाली नागरिक मताधिकार आउट अफ कन्ट्री भोटिङ देना सवालमा प्रमुख आयुक्त मानबहादुर कार्की सहितके पदाधिकारी सरकारवाला एवं जानकार हुकनसे विमर्श चलागिलक हो। आयोग सम्बन्धित मुलुकमा रहलक नेपाली नागरिकके संख्या, मतदाता नामावली संकलनके सम्भावित प्रक्रिया, मतदानके सम्भावित विधि तथा निर्वाचन सञ्चालनमा कूटनीतिक नियोगके भूमिका बारे विचार विमर्श कर्तृत्वलक आयोगके प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराई बटुलबाट विदेशमा रहलक नेपालीकै एकिन विवरण संकलन हुकन मतदाता नामावली मन समेट्न प्रक्रिया मतदान केन्द्रके सम्भावित व्यवस्था तथा मतदान पाछ मतपत्र व्यवस्थापन लगायत प्राविधिक ओ प्रशासनिक पक्षमा समेत आयोग छलफल चलैलबा। यस सन्दर्भमा आयोग परराष्ट्र मन्त्रालयकै सहजीकरणमा हालै विभिन्न मुलुक स्थित नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगके प्रमुख हुकनसे छलफल चलैल रह। आयोग आफ्नो अध्ययन सामग्रीमा फेरि विभिन्न मुलुक स्वदेश स्थित दूतावास तथा कन्सुलेटमा मतदान केन्द्र स्थापना गर्न, हुलाक मार्फत मतदान गराइन, प्रतिनिधि मार्फत मतदान गर्न तथा विद्युतीय वा मिश्रित विधि अप्नेना विकल्प उसोके आवश्यक कानूनी वा नीतिगत परिवर्तनके अध्ययन फे गर्ती रहल बा। यस समाचारके संग खोज खबर ओराइल अन्तिम जैति जैति खबरके मुख्य शीर्षक फेरसे। पानी पर्ना पर्नाली पूर्वसे पश्चिम सर्ती, सुदूरपश्चिम कालसम्म वर्षा हुइना। बाल बालिका सन्तुष्ट बनाई दिवा खाजा मेनू वीरेन्द्र विद्या मंदिर कैंपस व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष में धनंजय रिमाल विजय लगातार वर्षा पाछ सुदूरपश्चिम के डोटी डडेलधुरा बैतडी दारचुला बाजुरा में सवारी आगमन मनरोग वर्षा के कारण दुईजना के ज्यांगल 29 थ्रो सड़क अवरूद्ध लिताबकला थारू भाषा खोज खबर अत्र और समाचार 6 बजे नेपाली भाषा मनक खोज खबर सुन सिक्दी आवक खोज खबर से प्राविधिक मित्र आका चौधरी धन्यवाद देती मई गीता फिर विदाई सामुदायिक रेडियो टीका परफ्यूम सुन्दी रवि राम राम
13: अत्यन्त जरूरी सूचना मिति 2083 साल असोज 9 गते से 11 गते सम्म जानकी गाउँपालिका के क्षेत्र मन बारीकै जोखिम रहल भुइलक महर्से सक्पु गाउँपालिकावासी युकन हार्दिक अर्जी करती आपन खाद्यान्न सामग्री महत्वपूर्ण कागजात नगद तथा जिन्सी सामान लत्ता कपड़ा दवाई लगायत के अत्यावश्यक सामान सुरक्षित ठाउँ मन धर्बी घर वो आन्दर पान्दर के अवस्था जोखिमपूर्ण हुइसेक्ना भुइलक महर्से आवश्यक सतर्कता अपनाकन सुरक्षित ठाउँ मन बैठक लागि अनुरोध करती सम्भावित बाढ़ी के जोखिम हन मध्यनजर करती समय में सुरक्षित रही सतर्क रही वो एक और जान हन सहयोग करी जानकी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका के कार्यालय दुर्गौली कैलाली
14: लक्ष्मी आभूषण भण्डारमा छड्के तिलहरी माइली तिलहरी रामलीला झुम्का पिजडा झुम्का बाला औठी पेन्डल चन्द्रमा र अर्डर गरे अनुसार सुन चाँदीका गरगहनाहरू सुपथ मूल्यमा बनाइन्छ एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला लक्ष्मी आभूषण भण्डार सिद्धार्थ चोक टिकापुर कैलाली संचालक प्रकाश भण्डारी सम्पर्क नम्बर 9848531595
15: लक्की ट्रेडर्स टिकापुरमा एनटीसी र एनसीएल को सिम कार्ड ई सिम पाइनुका साथै फोटोकपी लिमिनेसन प्रिन्ट ब्याट्री र ब्यालेन्स ट्रान्सफर पनि गरिन्छ
16: हराएको मोबाइल एमडीएस प्रणालीद्वारा दर्ता र मोबाइलका सम्पूर्ण पार पुर्दा पाइनुका साथै मर्मत पनि गरिन्छ साथै 5 मिनटमा पासपोर्ट साइजको फोटो निकालिन्छ मोबाइलमा फोल्डर हाल्ने र बुफर पनि उपलब्ध गराइन्छ
15: लक्की ट्रेडर्स सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम नजिकै नेपाल टेलिकम जाने बाटोमा सञ्चालक खगेन्द्र चौधरी सम्पर्क नम्बर 9868551000
17: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: नेपालगंज मेडिकल कलेज में कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कंसल्टेंट न्यूरो साइकोट्रिक डॉक्टर आइनोडिन बागवान
1: यही असोज 17 गते तेस्रो शनिवार का दिन
2: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
0: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने, बढी रिसाउने, झिझो मान्ने, बरबराउने, अमिलो व्यवहार गर्ने, कामकाजमा मन नलगाउने, एक्लै बसेर टुलाउने, भोक नलाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, धेरै रक्सी खाने, लागू पदार्थ सेवन गर्ने,
2: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने, स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी, छारे रोग, मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या, नकारात्मक सोचाइ आउने, यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोला।
1: डाक्टर आउने दिन यही असोज 17 गते तेस्रो शनिबार।
3: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म। बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर। टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस्, आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क फोन नम्बर 9868 80008 र 9825 63 77 72।
4: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दे गुवाज आगिले न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनाइना हुने न पट्टा नि पैना त
5: अरे गहना बनाइना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
4: तुहार बाटास तरह तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मा से गहना बना कान से के कतरा सुघर बना कान लबाटी
5: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भाटवट खाई आओ जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में गर गहना बनाई। सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर फेहरी सिंह सुनार।
4: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए। मोबाइल नंबर 9864 41 208 और 9846 39 261।

0: कामदार आवश्यकता सम्बन्धी सूचना।
1: काठमाडौँ स्थित घरेलु कामदार का लागि एकजना पुरुष र एकजना महिला तथा सिन्धुपाल्चोक का लागि एकजना कामदार तत्काल आवश्यक परेको हुँदा इच्छुक तथा योग्य व्यक्तिहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
0: कार्यस्थल काठमाडौँ तथा सिन्धुपाल्चोक, आवश्यक संख्या पुरुष एकजना, महिला एकजना तथा अन्य एकजना। सम्पर्क फोन नम्बर 9851400725। इच्छुक व्यक्तिहरूले समयमै सम्पर्क गर्नुहोला।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकलमा जाइस् त?
3: मै नै जाइँ, उहाँ आफ्न अनुहार बिगारके घर से बाहर नै निकर्छु।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाइको। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहू, तब तो मैं अब भी जाए।
0: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टीकापुर। फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर वस्त बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं सीख ठो।
1: अरे कहाँ से नाम था
0: कहाँ से लन भो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फे करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।
3: अत्यन्त जरुरी सूचना मिति 2083 साल असोज 9 गते से 11 गते सम्म जानकी गाउँपालिका के क्षेत्र मन बाढीकै जोखिम रहल भुइलक महर्से सबको गाउँपालिका वासी कन हार्दिक अर्जी करती आपन खाद्यान्न सामग्री महत्वपूर्ण कागजात नगद तथा जिन्सी सामान लत्ता कपड़ा दवाई लगायत के अत्यावश्यक सामान सुरक्षित ठाउँ मन धर्बी घर वो आन्दर पान्दर के अवस्था जोखिमपूर्ण हुइसकना भुइलक महर्से आवश्यक सतर्कता अपनाकन सुरक्षित ठाउँ मन बैठक लागि अनुरोध करती सम्भावित बाढी के जोखिम हन मध्यनजर करती समय में सुरक्षित रही सतर्क रही वो एक और जान हन सहयोग करी जानकी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका के कार्यालय दुर्गौली कैलाली।

0: 11 प्रकार का विशेषज्ञ सेवाहरू अब टीकापुर अस्पताल में उपचार का लागि विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाहरू
1: हाड जोड्ने विशेषज्ञ सेवा र विशेषीकृत आर्थ्रोस्कोपी सेवा जोड़नी को दूरबीन बाट शल्यक्रिया
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा ल्याप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पाठीघर को शल्यक्रिया सेवा
1: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा जनरल सर्जन द्वारा विभिन्न किसिम का शल्यक्रिया सेवा ल्याप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पेट को शल्यक्रिया सेवा
0: जनरल फिजिशियन विशेषज्ञ सेवा
1: रेडियोलोजिस्ट विशेषज्ञ सेवा
0: दन्त रोग सेवा
1: मृगौला का बिरामी का लागि डायलिसिस सेवा
0: मनोचिकित्सक विशेषज्ञ सेवा
2: हरेक महीना को प्रत्येक शनिवार
0: र सिटी स्कैन सेवा
1: गंभीर बिरामी का लागि भेन्टिलेटर सहित को आईसीयू एसडीयू सीईओएनसी र बालबालिका का लागि एसएनसीयू सेवा
0: रोग पहचान का लागि प्रयोगशाला सेवा बायोकेमिस्ट्री इम्युनोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी पारासिटोलॉजी सेरोलॉजी इंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी डिजिटल वीडियो एक्सरे अल्ट्रासाउंड डिजिटल एक्सरे सेवा ईसीजी फिजियोथेरापी सेवा अस्पताल का अन्य सेवाहरू स्वास्थ्य बीमा सेवा सुरक्षित गर्भपतन सीएसी सेवा
1: फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा 24 घंटा
0: इमर्जेन्सी सेवा एम्बुलेन्स सेवा सब वाहन सेवा
1: हिंसा पीड़ितहरूका लागि ओसीएमसी सेवा मेडिको लिगल सेवा
0: सब परीक्षण सेवा सर्पदंशको उपचार
1: 12 रक्षित समूहलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सामाजिक सेवा इकाई
0: जनस्वास्थ्य तर्फ खोप सेवा एआरटी सेवा टीबी लेप्रोसिजिन एक्सपोर्ट सेवा
1: सेवा पाउन कठिनाई भएमा अस्पताल प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-488 सूचना अधिकारी पदमराज भट्ट फोन नम्बर 97-62-48-35-28 उपेन्द्र शाह 98-21-60-24-57 र अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत सरोज चौधरी को फोन नम्बर 98-57-85-63-22 मा खबर गर्नुहोला वा टीकापुर अस्पताल को क्यूआर कोड मार्फत अनलाइन सुझाव गुनासा रेकर्ड गराउनुहोला
3: ल यति छिटो आमा बन्न लागो त सकि न सकि सबै काम गर्नुपर्छ कस्तो गाह्रो हुन्छ पनि काम गर्न विदेश जानु भएको छ के गर्ने के नगर्ने केही थाहा छैन म त जन्मा परे जस्तै लाग्छ
4: त्यस्तो राम्रो पढ्ने मेरो साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्यलमा पारी 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ
5: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश